0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
0: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
2: तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका ५ सोलु कुम्बु

0: आज त तिमी धेरै मलिन थकित देखिन्छौ नि। के भयो? उसले आज फेरि गाली गर्यो, पैसा पनि दिएन, मोबाइल पनि खोस्यो। ओहो दिदी, कुट्नु मात्र हिंसा होइन, गाली गर्नु, डर देखाउनु, पैसा नियन्त्रण गर्नु, यी सबै घरेली हिंसा हुन्।
1: कोशी प्रदेश स्तरीय स्थित तथा रोजगार मेला 2083 युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय को आयोजना में सोलुतुकुंड नगरपालिक को क्षेत्र में शीत तथा रोजगार को खुशी में रहकर युवा महिला तथा

0: Ai, o rádio Luiz Tolu é tempo.
1: Tolu FM, 101.2 MHz.
2: उज्ज्वल भविष्य को लागी हम लोग अभियान
3: संचय सूर्य फैन स्टूडियो टाइम
4: मैपिन एयर बिहान को 11 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू
5: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुन्नु भएको छ सुन्नु एफएम सुन्नु एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: हाम्रो संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल आत्मीयता यी यति कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुदूर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह
1: रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी सूचना गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाजी पोहरो ठूल जनधन को स्मृति प्रति हमी गहरो सकारात्मक छो सही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीला गंभीरता पूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को नीति सारे हो इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखने अटूट सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न कर हमी थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान करदिक आग्रह रेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय बिहरा संबंधित सब में जानकारी कराइ
2: वातावरण सुबाप तो लुकिंदु
3: बत्ती को तार है ख्याल गरौ
2: नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र को सार्वजनिक सूचना
4: सम्पूर्ण विद्युत उपभोक्ता महानुभावहरूमा विद्युत सुरक्षा तथा चेतनामूलक सन्देशको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।
2: विद्युतका पुल तार ट्रान्सफर्मर तथा अन्य विद्युतीय संरचनाहरूबाट सधैँ टाढा रहनुहोस्। भिजेको हातले विद्युतीय सामग्री नछुनुहोस् र बालबालिकालाई विद्युतीय जोखिमबाट बचाउनुहोस्। विद्युत सेवा निरन्तर र भरपर्दो बनाउन आफ्नो विद्युत महसुल तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् 60 दिन भन्दा बढी विद्युत महसुल भुक्तानी नभएमा जुनसुकै समयमा विद्युत लाइन काटिनेछ।
4: विद्युत चोरी कानून विपरीत दण्डनीय अपराध हो। यसले दुर्घटना भञ्जन स्थिति तथा विद्युत सेवामा अवरोध निम्त्याउँछ। चोरी देखिमा कानून कारवाही गरिनेछ। पुलमा आगो लागेको तार नत्रिएको ट्रान्सफर्मर समस्या आएको वा कुनै पनि विद्युतीय जोखिम देखिएमा तुरन्त जानकारी गराई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बच्नुहोस्।
2: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कार्यालय प्रमुख 9852583226 प्राविधिक प्रमुख 9852583227 सूचना अधिकारी 9852581226 र काउन्टर 0382504003
4: समय नै महसुस दिन उचालो भविष्य निर्माण गरौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा जनहितमा सारी सन्देश।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलू एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु।

एग्रेसिव न्यूट्रिएंट रेस प्रतियोगिता को संस्करण संचालन होने संबंधी सूचना। इस नाते दुतोसी गांवपालिका को आयोजना में गांवपालिका को पर्यटन प्रबंधन प्रकृति संरक्षण तथा खेलकूद को विकास करने उद्देश्य ले आगामी 2083 मंगसिर 17 गते तद अनुसार सन 2026 दिसंबर 3 तारीख का दिन खुला तथा उमेरगत समूह में संचालन होने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को एग्रेसिव

संस्कार और संस्कृति केवल बनने था सबके विशेषज्ञ आजकल आत्मता यति कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुदूर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सनुहोला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुपुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
3: 5 PM सात को 5 बजे
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: Raio Rádio Minsolo é
1: Sulu FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Sulu FM studio time.
3: It's 6 p.m. Saanjh ko 6 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुम नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Suru FM. It's studio time.
4: It's 7 p.m. Start to start with.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: अर्थात देश का विभिन्न भाग www.selefin.com संसार भर एक साथ प्रसारण भईर साझ सात बजे सोलो समाचार लेकर आईपुगे सरस्वती पुरी संगे अंजुकार की सोलो समाचार को शुरूआत में मुख्य मुख्य खबर का शीर्षक फाफल अस्पताल में 31 जना लगाए रेबीज विरूद्व को खोप चार पर्व में सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण सुनकुमुख यातायात व्यवसाय उठाए सड़क देखी पारासम का सवाल चेतला आधारभूत विद्यालय में जंक फूड निषेध को विषय लीएर विवाद सुलझी सोची नाइस गते पठन पाठन सुचारू हुने सोलखुम्बु में स्वर्गीय गंदी शेर्पा को स्मृति में खुला पुरूष भलीबल प्रतियोगिता हुँदै रमाइलो डांडा र हरकपुर में यात्रु सहायता कक्ष संचालन सुदूरपश्चिम र कर्णाली सहित पश्चिमी भूभाग मनसून बाहरियो कोशी प्रदेश में दशैं अगाड़ी नै भाषा विधेयक पारित करने तैयारी कंग्रेस महाधिवेशन में देवबा उपस्थित न भए गगन थापाले उद्घाटन करने हरेक नागरिकलाई आवास को ग्यारेन्टी करने गरी भवन ऐन को विधेयक संशोधन रसुआ बाड़ी का सब बोक्ने 65 जना एम्बुलेंस चालक सम्मानित ट्रम्प को धमकी पछि जे 7 ले 10 करोड़ बैरल तेल र डीजल निकासा गर्ने फ्रांस में विद्यार्थी का आंदोलन चर्कियो 560 भन्दा धेरै विद्यालय प्रभावित र एशियाली खेलकूद क्रिकेट में पाकिस्तान हराउँदै भारत ने जित्यो सुवर्ण पदक
1: मेरे तो हाथ खुट्टा अरुणसा झमझम कर पिनासले हैरान बनाए यूरोप हो के एक बार को जिंदगी दुख दुख में बिताउनु पर्ने उपचार कता गराउने होला
2: ए दीदी मैं गैस्ट्रिक भएर तनाव थाके हैरान भए पनि निन्द्रा नलागेर रातभर जागरण जस्तै बस्नु पर्छ तर यो सबै रोगहरुको उपचार हामजी औषधालयमा हुन्छ रे नि त त्यही भएर उपचार गराउनु भनेर आमजी औषधालय तीर हिड़क नहीं मत आउस दीदी और संगे जाऊ
3: यहाँ नशा च्यापिएको हड्डी खिएको हात खुट्टा झमझम

0: Manche. Sony FM Studio Time.
1: 10 PM. रातको 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.